0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दी रूफिंग साइटिंग स्टुको सॉफ्ट फिशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए, उपजै सूर न जापै चंद, जहां ज्ञान प्रकाश अज्ञान मिटंत। गुरबाणी दा ज्ञान जो है, जिस तरह के आप जी सरवण कर रहे सो, ज्ञानी हरभजन सिंह जी यूके वालियां दा जप विचार ते पहला जपजी साहब तो पहला जिहड़ा विचार उन्होंने दित्ती है, कल तो पहली पौड़ी दा भी आपां कोशिश करांगे। उन्हां दी जिहड़ी कथा है वह लगातार पहला आपां प्रोग्राम दे बाकी हिस्सों दे विच करदे सी, इस हिस्से दे विच पेश करन दी कोशिश करांगे, क्योंकि गुरबाणी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे। जे क्योंकि बाणी ते गुरु च अंतर नहीं है, इसे करके आपां कहिंदे आं गुरबाणी। ते गुरबाणी दा दर्जा केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह नूं है। रात मर्यादा दे विच वी जदों जिक्र आउंदा है कि कीर्तन बाणी दा होवे, उदाहरणां वास्ते भाव बाणी दी एक्सप्लेनेशन वास्ते, जे गुरसिखां दी बाणी गुरसिखां दी दा कलाम भाई नंद लाल जी ते भाई गुरदास जी इस नूं एक्सप्लेन करन वास्ते, इसकी व्याख्या वास्ते उदाहरण दे तौर ते उस दी उदाहरण दित्ती जा सकती है, उस दा गायन हो सकता है। ते बाणी अपने आप दे विच चानण है, रोशनी है, ज्ञान दा दीपक है। जिस तरह हनेरे दी जहालत दे विच ज्ञान दा दीपक प्रकाश हुंदा है, जिस तरह सदियां ते किते हनेरा होवे, एक छोटी जी रोशनी भावें सिर्फ निक्की जी माचिस दी तीली नाल अग बाल दईए, जिन्ना चिर वो तीली जल्दी रहेगी, वो लाट जल्दी रहेगी, इन्ना चिर उस हनेरे दे विच आस पास जिहड़ा चानण होएगा, भावें वह सदियां दा हनेरा होवे। गुरबाणी तां गुरु नानक पातशाह दा आगमन तां तुंद नूं भी परे करन वाला है, मिटाण वाला है। आम सूरज जिहड़ा है वह प्रकाशमान भी होवे, जे तुंद है तां सूरज दी रोशनी नज़र नहीं आती, इत्थे तक कि बंदा बंदे नूं नहीं देख सकता जे संघनी धुप होवे। ताहीं तां भाई गुरदास जी कहिंदे आ सत गुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानण होआ। एक तां हनेरा हुंदा है जिस दे विच जिस तरह आपां जिक्र कीता छोटा जिहा दीपक भी बालिया, जिन्ना जिथे जिन्ना उसका घेरा है वह चानण हो गया, दूर तो भी नज़र आएगा किते दीपक जग रहा, पर तुंद दे विच कुछ नज़र नहीं आता। पर गुरु नानक पातशाह का आगमन प्रकाश पाओ प्रगट होना एक अजिही करामात है कि जिस दे नाल ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਨਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਪਜੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟੰਤ, ਚੰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਜੈ ਸੂਰ ਨਾ ਜਾਪੈ ਚੰਦ, ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ अग्ञान मिटंत इत्थे ही समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट।

0: तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम वाहे गुरु साहेब जी, तनासरी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम सर दीन दयाल ना तुम सर, अब पतियार क्या कीजै, बचनी तोर मोर मन मानै,

0: ਸਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ।
1: ਸਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
1: ਓਅੰਕਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਨੇ ਆ। ਕਹਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਸੇਤੀ ਵਾਸਾ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਖਿਣ ਤੋਲਾ ਖਿਣ ਮਾਸਾ। ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਤੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਣ ਚ ਮਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਾਂ, ਹੁਣੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਬੂਤ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲ ਘਾਲੀਏ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਥਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਧੁੰਦੇ ਸਨ ਗਾਗਰ ਚ ਸੇਵਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੱਸ ਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇ? ਤੂੰ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਸੇ, ਮੈਂ ਉਡੀਕਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਭਾਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੋ ਜਤੇ ਸਤੇ ਨਹਿ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੂਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹੋ ਨਿਮਾਣੀ ਢਹਿ ਪਈ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰ ਸਹਾਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, जा रहे सन। बड़ा सुंदर पोशाक पहने भाई नंद लाल अगो आया, कह लगा मैनू बुलाउणगे, वेखणगे, नजर करनगे, मैं निहाल हो जावांगा। कोल आके सतगुरु ने मुंह मोड़िया, दूजे पासे तुर गए, दे वल वेख्या भी नहीं। कह लगा पातशाह एक बेनती सुन जाओ। कह लगे कि मेरा सिर ला लो मैं दोना, पर एक बारी नजर भर के वेख दियो, कृपा करो। उन्होंने लिखे है गुफ्तम के जान दे हम, गुफ्तम फारसी है। मैं आख्या जी मैं जान दे देना, सिर दे देना। गुफ्तम के जान दे हम इवज यक निगाहे, तो तुहाडी एक नजर तो मैं जान दे देना। बगुफ्ता उन्हें अगो आख्या म्याने माओ तो सौदा ना मे शब्द, ए सिर मटे नजर नहीं मिलती, ए जदो कृपा होवेगी उदो ही मिलेगी। कृपा कृपा नाल ही मिलती है, ओदी बख्शिश नाल मिलती है, मैं ओदा कोई मुल नहीं दे सकता। कह लगे मैं कोई दुकानदार नहीं सौदा करना, गुरु दुकानदार नहीं हुंदा, रब कोई दुकानदार नहीं कि मैं कुछ दे दिया तो कुछ खरीद लेवा। कहते नहीं नहीं साडे कोल कुछ भी नहीं, जो है ओदा ही दिता तो है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागा मेरा। भाई गुरदास जी ने कवित लिखिया, कहंदे ने एक बंदा बाग च गया, फुल तोड़ के उथों ते बाग दे मालक अगे रख के कहंदा जी भेटा प्रवान करो मेरी। कहेगा फुल भी मेरे बाग भी मेरा, ते तू किवें मालक बन गया तोड़न नाल, समेर ते कुछ आए। उथों ही सोने की कनी लैके, क्योंकि पहाड़ ही सोने का, आखे लै पहाड़ सोना भेटा कर रहे हैं, आया कित्थों है, वो तो पहाड़ ही सोने का। तीसरा प्रमाण दिता कि कोई एक लैके मोती ते आके समुद्र मोती भेटा कर रहे हैं, सिपे चो मोती निकलता है, तो सिपे गया कित्थों, आई कित्थों, समुद्र चो। कहने ने गुरु को नहीं ज्ञान लैके, गुरु को नहीं कोई सिख आखे आ सुनो मेरा ज्ञान। सतगुरु कहते ने सिखिया कित्थों, जो रखे तेरा तो है ही नहीं, इते तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा, ए सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। हां जी
0: हम सार दीन दयाल न तुम सार,
1: किवें हुण डगणे उहदे दर ते। भगवत जी सानू सिखा रहे ने हम असे साडे वर्गा सर हुंदा बराबर, साडे वर्गा साडे बराबर दा कोई दीन कोई नहीं। दीन दा अर्थ है गरीब, दीन दा अर्थ धर्म भी है। जिहड़ा फारसी वाले पासे शब्द आया ना दीन, ओहदा अर्थ है धर्म। लेकिन जिहड़ा दीन हिंदी संस्कृत वालों आया है इसका अर्थ हुंदा गरीब। जदों आएगा ना दीन दर्द दुख भंजन घट घट नाठ अनाथ, इत्थे दीन होवेगा गरीब। ते जिथे होवेगा दीन बसारियो रे दीवाने दीन बसारियो, उथे अर्थ होवेगा धर्म। साडे वर्गा गरीब कंगाल कोई नहीं। हम सर दीन दयाल ना तुम सर, तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं। इन्नी दया कौन करेगा? बंदा ते थोड़ी जी दया करदा उस तो ज्यादा इन क्रोध आ जांदा, इहदे अंदर क्रोध भी वसदा ना, मेरी दया नहीं, निर्दयता भी वसदी है, कठोरता भी वसदी है। पर तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं, साडे वर्गा गरीब दीन कंगाल कोई नहीं। हां जी
0: अब पतियार क्या कीजा,
1: पतियार शब्द दे अर्थ बहुत ने। जेड़ा इथे लगदा वो आजमाइश, किसे नू आजमाउणा, कोई होर को अजमाउण दी गल कोई नहीं, किसे प्रमाण दी लोड़ नहीं। साडे वर्गा गरीब कोई नहीं, साडे कोल अपना कुछ भी नहीं। गरीब हुंदा जिसका किसे वल ध्यान होवे, अपना कुछ भी ना उसका होवे। दातिया साडा ते तन भी अपना नहीं, साडा कुछ भी नहीं, जो कुछ है तेरा। ਹੋਰ ਪਤੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਤਿਆਰਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ,
0: ਬਚਨੀ ਤੋੜ ਮੋੜ ਮਨ ਮਨ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ।
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਖਟਖਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਨੀ ਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੜੀਆਂ, ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਹਕੀਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਲੇਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕੀ ਚੋ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਦੀ ਧਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਮਜਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਛਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਾਟ ਆ। ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੜ ਜਾਣ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ, ਰਾਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਡਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੱਖੜ ਚਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਪੀਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਲਾ ਮਜਨੂੰ ਆਸ਼ਕ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਗਾਵਣ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਟੇ ਅਵਗਟ ਡੂੰਗਰ ਗਣੋ, ਇੱਕ ਬਿਨਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ, ਰਮਾਈਏ ਸਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ, ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜਾਏ ਰੇ, ਹੋਮਨ ਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ, ਸਹਿਜ ਕਰੋ ਵਪਾਰ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਲਾ ਦਿਆ, ਬਿਖ ਲਾ ਦੀ ਸੰਸਾਰ। ਆਓ ਭਾਈ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ, प्रेम दे दे मैनू के शक आवे ही कोई ना। हां जी
0: हां बल बल जाओ रमैया कारने।
1: कारने दा अर्थ की है? कारने दा अर्थ है कारनामे। कहने ने कारनामे कहते तुहाडे कौतकां तों तुहाडे कारनामयां तों मैं बल बल जाना। बल दा अर्थ है बलहार। मैं कुर्बान जाना जो भी दाता तू कीता, जो सिरजिया, जो तू बनाया, जो तू कर रहे है, मैं उस तो सदके जाना। तेरे हर कौतक तो हों बल बल जाऊं। रमैया कारने राम दे कारनामे तो मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना। हां हां जी
0: कारण कवन अबोल।
1: मैनू एक कारण दसो, तुसी मेरे नाल बोलदे क्यों नहीं, गलबात क्यों नहीं हो रही? भगतां दे रब दे प्यारियां दी सिद्धी रब नाल गल है, परमात्मा नाल। हो ते साडी भी सकदी है, पर सानू दुनिया दे चमेले नहीं छड्डदे। असी जदों चुप करके बैठे हां ना, खिमा करना वेख लैना मैं सच कह रहे हां कि नहीं। चुप करके भी बैठे हैं, कदी धी नाल गल्लां करदे रहिंदे आ मन कर, कदी पुत्र नाल करने, कदी सज्जनां नाल करने, कदी बिजनेस लई करने, कदी दुश्मनां नाल झगड़ने। असी ते रब दीआं गल्लां किवें करिए, दुनिया दीआं गल्लां नहीं मुकदीआं। दुनिया दीआं गल्लां इन्नीआं ने कि मुक्कण च ही नहीं आउंदीआं। उहो लै के सौ जाने, उहो लै के उठने आ। और रब दे प्यारे नाना जुड़ सकन ते कहंदे ने अज तेरे नाल गल क्यों ना हो रही। फरीदा याजना सुते कंथ सिवंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो दोहागने तुम क्यों रहन वहाए। सीधी गल जिन्हां दी है, गुरु अर्जन देव कहंदे ने परमात्मा ने मैनू एक गल कही, जिसनू मैं राह विखा दिया उसनू कोई भुला नहीं सकता, ते जिस नूं मैं भुला दिया उन्हूं कोई राह विखा नहीं सकता। जिसे दिखाले वाटड़ी, जिसे दिखाले वाटड़ी तिसे भुलावे कौन। जिसे भुलाई पंध सिर तिसे विखाले कौन। रब नाल जिन्हां दी सिद्धी गल है, परमात्मा नाल गल है, वह जरा क टुट जाण ते कहिंदे ने अज गल क्यों नहीं हो रही, अज तू मेरे नाल जुड़ क्यों नहीं रहा। बहुत पुरानी घटना है और इतिहासक है। यहूदियों का पैगंबर मूसा जा रहा सी ते आजड़ी अरदासा करदा पे। हुण अरदासा एक अनपढ़ बंदा, एक पढ़िया लिखिया ग्रंथी करदा, बड़ा फर्क हुंदा पढ़े लिखे दा ते अनपढ़ दा। उह कहिंदा अरदास उहदी सुन लो, कहिंदा खुदा मैं तेनू वेख्या ते नहीं, पर मैं सुनया कि तू है। वेख्या मैं कोई नहीं, जानदा मैं कोई नहीं, पर मैं सुनया तू है। ते मैं ये भी सुनया कि ना कोई तेरा धी ना कोई पुत्र, तू कल्ला ही है, अपने वर्गा आप ही है। ते मैं लभदा सब पिया कोई मित्र मेरा बने, कोई भी नहीं बनिया। भेडां बकरियां ही ने मेरे कोल, आप मित्र बन चलीए, क्योंकि मेरा भी ना कोई मां ना कोई बाप ना कोई भैन, ना मैं भी कला दे तू भी कला, आप मित्र बन जाइए। हुण बड़ी हौसला करता पिया, हाथ जोड़ के कहंदा जे तू आ जाए ना अद्धा वधिया भेडा बकरियां तेनू दे दे, जे तू आ जाए साग ते मिस्सा अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा। देरी चे तेरी जुत्ती टुटी होवे तो मैं गंढ देंगा, तेनू ताप चढ़ी होवे तेरा बुखार उतार देंगा, मैनू बूटी का पता। तेनू जुआ पै गई हूं तो मैं बूटी का पता मार देंगा सिर च पा के। मूसा चलिया कह लगा वो मूर्खा इस तरह अरदास करी दी सिख मेरे को सिखाई। वो चार कदम गया कह लगा जी भुल गई है, वो हूं मूह दे थप्पड़ मारिया तो कह लगा ये गलत अरदास ना करिया कर। कह लगा जी नहीं करता। कह लगा वाह रब्बा अजे मिलया नहीं तो पहले ही थप्पड़ पै गया, अज तो बाद मैं तेरा नाम ही नहीं लवांगा, मैनू तेरे वर्गा मित्र नहीं चाहिए। अज हुण कारण कमणे बोल मेरे नाल बोलदा क्यों नहीं, मेरे नाल तेरी गल क्यों नहीं हो रही। जुड़न लगा ना ते जुड़ नहीं सकिया, पर एक आवाज आई वही आमद सूए मूसा अज खुदा, वही कहिंदे ने पैगाम, पैगाम खुदा दा आया सुन भाई। बंदा ए महाराज मां कर दी जोदा, मेरा बंदा मेरे नाल जुड़िया ते सिद्धियां मेरे नाल गल्लां कर रहा सी, मैं ते उहदा साग खा रहा सां, उहदी अरदास मेरे तक पहुंच रही सी। उहदे कोल शब्द चंगे नहीं सन, उहदे कोल प्रेम ते है सी ना, उहदा प्रेम सच्चा सी, सच्चा सी। तेनू मैं जोड़न वास्ते भेजे है कि तोड़न वास्ते भेजे है? नहीं बराए वसल कर देने आम दी, नहीं बराए तू बराए वसल कर देने आम दी, नहीं बराए फसल कर देने आम दी। फसल हुंदा मलाप, फसल हुंदा तोड़ देना, तू ते तेरे जोड़े नूं भी तोड़ना। एक ध्यान रखो, भावे को कुड़ा ज्ञानी है किते को जुड़िया होया सिख ना टुट जाए। वेखो जे ओहदे विचारे दे लफ्ज जेड़े सीधे नहीं, ओहदा मन किन्ना सीधा, वह प्रेम नाल किन्ना जुड़िया होया, अंदरों ओहदा प्रेम किन्ना। हुण कहिंदे ने की कारण है अज जुड़ नहीं रहा, अज तार नहीं तेरे नाल जुड़ रही। हम बल बल जाओ रमैया कारण, कारण कवन अबोल, बोल हुंदा ना बोलना गलबात होनी, अबोल क्यों नहीं मेरे नाल बोलदा।
0: बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लिखे।
1: कुछ धर्म जेड़े ने पुनर्जन्म नहीं मनदे, पर सिख धर्म मनदा, साडे देश ते एशिया दे धर्म जेड़े ने मनदे ने वार वार जन्म। भगत कबीर साहब भी पुनर्जन्म नूं मनदे होए कहिंदे ने पूर्व जन्म हो तुमरे सेवक, मैं पहले जन्म विच भी तेरा सेवक सां, पर यात्रा अधूरी रह गई मिल नहीं सके, अब तो मिटो ना जाए। हुण मैं सेवा तो किवें कर सकना, हुण ते सेवा करांगा तेरे द्वारे, तुण सहज की माथे मेरे दगाए। पूर्व जन्म बारे पट भी जिक्र करदे ने, कहिंदे ने अमृत प्रवाह छुटते अमृत सर, अमर सरोवर सद भरिया ते पीवे संत करे मन मज्जन, पुबजने सेवा करिया। वो कहिंदे ने इत्थे अमृतसर जो अमृत दे प्रवाह चल रहे ने, इहो ही पींदे ने जिन्हां ने पूर्वले जन्म विच भी सेवा कीती है। इहदा भाव पिछले जन्म विच भी उह सिख सन, पुराने जन्मां विच भी सिख सन। वो कहिंदे ने मैं तेरा अज दा सेवक नहीं, बहुत जन्म बतीत हो गए ने, उड़ीक दिया आस विच बैठा, कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म रैवर बिलचो, लख चौरासी भरम ते दुलभ जन्म पायो। सुखमनी साहब विच एक बचन है, पातशाह कहिंदे ने बड़ा भटकिया, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रो, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो अपन कर करम। पर भाग जागे, जदो भाग जागे कबहू साध संगत उपावे। मनुखा जन्म मिल गया, गुरु की संगत मिल गई, एथो फिर वापस नहीं जांदा, एथे आके मुकत हो जांदा, उस स्थान ते बोर ना आवे। अंतर हो ज्ञान प्रकाश, गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हो गया, हुण ठेडे खान दी लोड़ नहीं, उस स्थान का नहीं विनाश। ए सचखंड सदा कायम रहिंदा, उस स्थान का नहीं विनाश। मन का नाम रते एक रंग, सदा बसा साध के संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। असी पूर्वले जन्म विच भी तुहाडे सेवक सां, बहुत जन्म हो गया तुहाडे नाल विछड़िया भटकदे फिरे। हां हां जी,
0: कह रवदास आस लग जीवा,
1: बहुत जन्म बिछरे ते माधवे जन्म तुम्हारे लिखे। परे जन्म भी बड़ा सुंदर एक विद्वान ने कहा, कहंदे ने दात्या तू अपनी रजा का आप मालिक है, मेरा ते जोर तेरे नाल चलदा कोई नहीं। जे तू चाहना ना कि मैं तेरे तो विछड़े ही रवा ते तेरी मर्जी है, मैं खिड़े मथे मन ना। एक पंक्ति सरवण करो, गुरमुख सखिया सिख गुरु मलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कारे लाइया। एक कोल बैठे एक ने एक नू कहंदे ने जा लाहौर, दो साल गुरु अर्जन देव लाहौर रहे, किसे नू कहंदे ने जा काबल, ये तो उहदी मर्जी है। पातशाह जे तू ए चाहना ना मैं दूर ही रहा मैं विछड़िया रहा, तेरी मर्जी। पर मैनू एक एहसास जरूर रहे, मैं विछड़िया होया ते मैं अजे दूर हाँ, मैं ये ना भुल जावा कि मैं विछड़िया नहीं। एक पंक्ति है, विछड़िया का क्या विछड़ा, जेड़े रब नाल विछड़ गए उन्हें होर विछोड़ा की पैना, मिलिया का क्या बेल, जेड़े रब न मिल गए उन्होंने होर मिलकर की लैना। मेल तो असल हो गया, कहंदे ने बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेख है ये भी तुहाडे लेखे है। अगली पंक्ति सरवण कीती है, कह रविदास आस लग जीव, दुनिया विच दुनियादार बंदे आस नाल जी रहे ने। एक फकीर कहंदा है, ऐ आकाश तू जमदे भी वेखे तू मरदे भी वेखे, तू इथे वसदे भी वेखे उजड़े, क्योंकि तू तो कायम है, आकाश है ना, आकाश वेख रहे है सब कुछ। तू इथे मकान बनदे भी वेखे ढहंदे भी वेखे, रुख उगदे भी वेखे रुख पुटींदे भी वेखे, तू हर बंदे नू वेखिया। मैनू एक गल दस, इन्ना दुख हुंदियां बंदा जीउंदा किवें रह गया, ये जी किवें रहा। उन्हें एक गल जवाब दिता, कहन लगा आस दे कारण, कि अज ठीक नहीं कल नू ठीक हो जाएगा। दुनिया वल्लों सानू चोटां ते पैंदियां ने सैकड़े, उस वेले औखे भी बड़े होने आ, पर समझौता कर लेने आ, कोई नहीं पुत्र ने अज नहीं मन्नी कल मन लवेगा ठीक हो जाएगा, आ काम अज नहीं बने कल हो जाएगा। कहिंदे ने दुनियादार जे आस नाल जी जांदा है ते परमात्मा मैं तेरी आस नाल क्यों ना जीवां, दुनिया दी आसां ते पूरियां हुंदियां नहीं, पर तू किसे नूं निराश रखदा ही नहीं, मैनू आस है, मैं इस आस नाल ही जी रहा। कह रविदास आस लग जीवो, ते जिहड़ा तेरी आस विच जीवना ना, तेरी आस विच ते तेरा नाम ही जपिया जा सकदा है, ते तेरा नाम मैं जपदा हुआ ते मैनू होर की चाहिदा, बस तू याद आउंदा रहे, तू याद आउंदा रहे सानू सिखिया देगा जो गुरु अर्जन देव ने दिती है। हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन में आप नंकारा। इन एक प्रमाण दे के मैं बेनती करा, तो मैं इत्थे कह दिता शब्द कार, लफज ही है ना, कार ते बाहर कितने होवेगी, इत्थे ते कार कोई नहीं ना, पर शब्द है। पर जदो असी कहने ना वाहिगुरु, ऐसा नहीं कि मैं आख्या इत्थे है ते वाहिगुरु किसी होर थां ते बैठा, नहीं, जिथे हरि आराधिया है तिथे हर मित सहाय। तुसी जिथे आखो परमात्मा उथे ही है, उस वेले ही है, हर थां ते है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, सच्चा सिरजन हार जियो। घर आखो वाहिगुरु तुहाडे घर विच है, बाहर आखो वाहिगुरु घर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन के है संग आओ लड़ी वार, विचार जड़ी चल रही है। कह रविदास आस लग जीवो, चिर बहो दर्शन देखे, बड़ी देर हो गई। असल विच इत्थे युगां दी गल नहीं, एक घड़ी दिवस मुख बहु दिहाड़े, एक घड़ी न मिलते तो कलयुग होता, एक क्षण भी विसर जाए तो भगत कहंदे ने बड़े जन्म हो गए, बड़ी देर हो गई है, एक पल भी हो जाए तो कहते ने युग बतीत हो गए ने, चार पै चाहो जुगा समान है, रहन भाई तब अंत न जाने। कह रविदास आस लग जीव, चिर पायो दर्शन देखे, बड़ा चिर हो गया तेरे दर्शन किते हैं, हुण ते मैनू दर्शन दे। असल सानू समझा रहे ने, निमाने नताने हो के जिस दिन हाथ जुड़ गया उहदे दर ते डिग पै, उस वेले सिर ते हाथ रख के गल नाल ला लवेगा। अरीक ने यही हां, हो तुमरी करो नित आस प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे, मैनू कदों गल नाल लगाओगे। वो कहंदे ने तू ही दूर भजना, मैं ते तेनू सदा ही लगाया, हुण ही लगाना, देर वाली गल कोई नहीं। बस दुनिया दियां आसां छड्ड रब दी आस बना, उस वेले हाजर नाजर है, उस वेले गल नाल लगा लैंदा है। आओ अगली है लड़ी वार विचार जेड़ी है वो सर्वन करो। हां जी,
0: चिर पयो दर्शन देखे,
1: तुहाडे दर्शन देखे, कृपा करो ये पल पल जेड़ा बतीत नहीं हो रहा, ये मेहर वरताओ। हां जी,
0: सतनाम वाहे गुरु साहिब जी, सलोक महला पहला।
1: इस सलोक गुरु अर्जन देव पातशाह जी का है जी। हां जी,
0: भूली भूली मैं फिरी, पादर कह न कोई।
1: सतगुरु ने सानू समझाउण वास्ते ही आखर ये बाणी उचारण कीते है। कहते ने मैं भुली भुली, जीव इस्त्री वालों कहा मैं भुली भुली फिर रही हां। भुले दा अर्थ की है, जिन्हों राह ना लभदा होवे, जिथे जाना है उहदा पता नहीं कि किहड़े पासे जाना, पता ना होवे। कई बार बंदा कोल ही चक्कर कटदा रहिंदा, लेकिन जदों पढ़दा कहिंदा हद हो गई है, ते नाल ही सी मैं एवें भुलिया फिरदा रहा। परमात्मा ते तेरे कोल अंदर ही बैठा से, तू लभदा फिरदा रहा, कदी किते कदी पहाड़ां विच कदी जंगलां विच कदी किसे थां ते कदी किसे थां ते, भूली भूली मैं फिरे, मैं फिरदे रही हां, बड़ी भटकी हां। जिवें हुणे तुसी सुणिया, लख चौरासी भरम ते आंदो लभ जन्म पायो, अनेक जन्मां दे विच भटके, क्योंकि भुली होई सा भुलावड़े, भुली भुल भुल पछो ताणी। बंदा दो काम ही आम करके करदा, यह तुहाडा अनुभव होवेगा जे ध्यान दियोगे, जां ते अवगण करदा जां इह पछताउंदा। अवगण भी करदा पछताउंदा, और उही अवगण फिर करदा, रेपीटेशन उही हो रही, कोई नवा अवगण नहीं। ओहो ही क्रोध है, कल भी ओहो सी, अज भी ओहो ही है, परसों भी ओहो होवेगा। भुले ओहो ने बंदा चक्कर विच है, भूली भूली मैं फिर। पादर पादर किनू कहंदे ने, टिकाणे नू, बहु अर्थक शब्द है। पादर दा अर्थ है पांधी, रस्ते ते तुरन वाला। पादर दा अर्थ है रस्ता, मैनू रस्ता कोई नहीं दसदा, ठीक राह कोई नहीं दसदा। रस्ता ठीक दसिया हुंदा ते मैं पहुंच गई हुंदी, कोई रस्ता ठीक नहीं दसदा, मैं भुली फिरदे हां। हां जी,
0: पुछ जाए सियाणिया, दुख काटा है मेरा कोई।
1: मैं जाके सियाणिया नूं पुछदी हां कि मेरा कोई आ दुख कट देवे, दुख केड़ा कि जिस मंजिल ते जाना उहदा राह नहीं लभदा पिया, उसका टिकाणा नहीं, जाना परमात्मा कोल, पहुंचा देंदा को किसे लोभ लालच कोल। तू ए शब्द पढ़ लै ते तेनू इन्ने लख मिल जाएगा, तू ए मंत्र जप लै तेनू इन्ना सोना मिल जाएगा, ए जप लै ए मिल जाए। मैं कहना कोई रब भी मिलन वाला है। मैं जाके सियाणिया नूं पुछदी हां, मित्र घनेरे कर थके मेरा दुख काटे कोए, कोई मेरा है दुख कटन वाला। मैं जाके सियाने नूं पुछदी हां, कोई मेरा दुख कटे मैनू रस्ता दसे। हां जी,
0: सतगुर साचा मन वसा, साजन उत ही ठाए।
1: हां, फिर आप ही रस्ता दसदे ने सानू, शब्दां विच प्रश्नोत्तरी होया, आप ही प्रश्न पैदा करना, आप ही उसका उत्तर देना। मैं पता मैनू लग गया कि सतगुरु सच्चा सतगुरु थिर रहन वाला सतगुरु जे मन च वस जाए ना जिथे गुरु वसया उस थां ते सज्जन परमात्मा वी सी ओंकार भी उथे ही सी गुरु जेड़ा सी ए मिल गया गुरु दा प्रकाश मिल गया गुरु दी शब्द मैनू सिखिया मिल गई सतगुर शब्द उजारो दीपा जगदा दीवा अंदर जदो जग पिया मैनू प्रकाश हो गया कहा तो कोई जिथे गुरु और रब भी उथे ही बैठा साजन उत ही ठाए सज्जन परमात्मा वह भी उसे थां ते से
0: नानक मन त्रिपतासी है सिफते साचा नाए
1: ये ते सच है कि कुछ भी मिल जाए बंदे दा मन नहीं रजदा ये पेट जेड़ा है ये ते दो नहीं ते चार रोटियां नाल भर जाएगा लेकिन किनिया का खा लेगा बंदा रज जाएगा कहेगा नहीं पर मन नहीं रजदा है ते सारी दुनिया का राजा होके कहिंदा हुण इंदर दा राज चाहिदा होर अगे चाहिदा होर अगे चाहिदा ये तृप्त भी हुंदा है साहब जी कहिंदे ने हां एक किनका एक बूंद ही मिल जाए ना असल भोजन दे ते तो तृप्त हो जाए केड़ी बूंद है गुरु ने आखिया तू सोने नाल नहीं रजिया चांदी नाल नहीं रजिया जमीन नाल नहीं रजिया चौधरों नाल नहीं रजिया आ तेनू रजावा उन्हें अमृत की बूंद मूह विच पा दिते बस पैण की देर सी एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न मोआ किवे रजिया तृप्त भाई तृप्ति हो गई सच भोजन खाया सच का भोजन छकया तृप्ति हो गई ये मन जेड़ा है तृप्त होंदा नानक मन तृप्ता से है मन तृप्त हो जाता सिफती परमात्मा की सिफत नाल साचे ना असल च भुख है ही जिन्हें समझ ली और रज आएगा साचे नाम के लागे भूख उत भूख खाए चलिया दो सिफती साचे नाए।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी ले पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नु कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue North East कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।
1: गुर अर्जुन पिखो ने गुर अर्जुन पिखो ने

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: गुर अर्जुन पिखो ने

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

सजना दी जी उम्र बीत दी जावे पज पापा रोवा तेन तरस रता ना आवे दे दे मौत भी छोड़े नालो मेरी मुश्किल हल हो जावे ओ यार फरी तो पैर मैं चुम्मा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाब।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इन्हां तो किसी भी तरह के नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दियां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन पैटियो डेक प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल से खोजी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, Southeast Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी

0: ਟੀ ਆਟੋ ਹੋਮ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਬੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਨੂੰ 403-554-4444
1: ਯਾਨੀ 403-554-4444 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮਜੀਤ ਪਲਾਹਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 210 23 32nd ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.

संत जनम हर जिस गायो कोट जन्म के धूप गवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम बढ़ाई।

0: मन प्रेम रतन राम रज मन राम कसवटी लाया अंजन सोविना गुर मुख रंग चलो लिया मेरा मान तनो पिना जन नानक मोसक जखो लिया अब जन्म तन पना जन नानक मोसक
1: एक ओंकार सतनाम करता प्रख निरपो निर्वैर काल मूर्त जूनी सब अंगुर प्रसाद आसम हला पहला वार श्लोका नाल श्लोक की महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की एक कटना लागी वार महला दूजा जे सोचन दावगवै सूर चढ़े हजार हेते चरण हुंदिया गुरु बिन कोरे अंदार
2: महला पहला नानक पूर्ण चेतनी माने अपने सुचेत छुट्टे तलवार ज्यों सुनिए अंदर खेत खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपड़े चीता नवे सवा पौड़ी आपने आप सजियो
0: आपने बचो ना हो दुई खुद सजिए कारे आसन ढिठो चाओ दाता करता आप नो तो सदैव करे पसाओ तू जानो सब से दिल ऐसे जिंद कवाओ
2: करे आसन ढिठो चाओ

0: नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा।
1: सलोक भला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करदार किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबे पूर नानक खाण बेनती।

बासर रैन बास जाको हित नाम स्यो परमती परमेश्वर के रंग रंगियो वासना ते बार पै देखिए ताम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाही ओरे काम स्यो पथरा को प्रभ सर्व में अर्जुन गुर।

जब लो नहीं पागल लार उदा तब लो भ्रमते फिरते बतायो कल कोर समुंदर में बूढ़े थे कभू बिठे नहीं रे।

गंगनरे खोजंत फिरे अपनासी अचल अजूनी संभो पुरखोतम अपार परे करण कारण सम

उद्वियो पुरुष विदातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो धन धन गुरु रामदास।

मूर्त पंच पर महान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैना काल समुंदर भय रूप प्रगट हरे नाम उदाहरण बसा संत जस हृदय दुख दरिद्र निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई मन बच जिन जान्यो पहो तहे।

सतगुर चरण कमल रिद धारंग गुर अर्जुन गुण सहज विचारंग गुर रामदास घर कियो परगासा गुर रामदास घर कियो।

जन कौ प्रभु दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ निहाल करी संगत श्रेष्ठ निहाल करी संगत श्रेष्ठ निहाल करी संगत श्रेष्ठ निहाल करी रामदास गुरु जग तारन कौ जग तारन कौ।

0: की हम परे ना कोए चोर किया चंगा क्यों होए।
1: कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इक्को एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी ले पॉल सेखू जी नो 403-829-5000 या फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड का पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 Avenue North East कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue North East कैलगरी।

मेरी जिंदगी दा ए दस्तूर बनदा वे, एक एक सवास तेरा नाम जप जप के सफला करां, कदे भी अमृत वेला ना खुजावा, हर रोज नितनेम करां, संगत विच बैठ के नाम नाल चोलियां परां। ऐ मेरी जिंदगी दा दस्तूर बन जावे, असूल बन जावे, जिथे तेरे दर घर दी सेवा करां, उथे मैं अपने माता पिता ते बजुर्गां दी भी सेवा सवाल करां। गुरु नानक दे घर विच सेवा नूं बहुत महानता दित्ती है, जिन्ना चिर असीं सेवा करके अपना हिरदा शुद्ध नहीं कर लेंदे, हिरदा साफ नहीं कर लेंदे, उन्ना चिर नाम भी इस भांडे विच टिकदा है नहीं। आओ मन विरथियां जोड़िए, गुरु घर दी मर्यादा अनुसार मां बाप दी सेवा उत्तम मनी गई है। जे असी अपने मां बाप दी सेवा नहीं करदे, गुरु घर विच कीती हुई सेवा भी प्रवान नहीं है। भाई गुरुदास जी पवित्र बचना विच कह रहे ने, मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां दी संभाल नहीं करदा, बार पुन दान करदा फिरदा है। ते भाई गुरुदास जी कहंदे, ओ दानी नहीं ओ बेईमान है। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। मापियां नूं छड़ के पुन दान करदा है, दानी नहीं बेईमान है। मां बाप पुत्र नूं मिलन वास्ते तरसदे ने, बहुती दूर नहीं इको ही पिंड विच रहिंदे ने। बड़े खुशकिस्मत ने ओ लोग जिन्हां कोल मां है, जिन्हां कोल बाप है। पर कई बार देखिया है ए पुत्र अपने आप नूं बड़ा बद किस्मत समझदा है। गुरु घर आ के अरदासां करदा है कि ऐ बाबा, मेरे कोलों हुण बुढ़े मां बाप सांभे नहीं जांदे, मेरे कोलों इन्हां दी होर सेवा नहीं हुंदी, तू इन्हां नूं सांभ लै। भाई गुरदास जी ने बाणी विच दस्या है ना, वक होवे पुत्र अन लै, मां प्यो दे उपकार विसारे। बुढ़े माता पिता नूं छड़ के बखरा हो गया है, माता पिता दे कीते उपकारां नूं भुल गया है। बापू ते सारी उम्र एही सोचदा रहा, बई बुढ़े वेले मैनू सहारा देवेगा, पर ए ते मापियां नूं तक के भी राजी नहीं। आओ सत्संगियो जोड़ो मन विरथियां, जिस दे असीं सिख कहाणा चाहुंदे हां, जिस गुरु नानक महाराज जी सेवा ते सिमरन करके असीं खुशी लैणा चाहुंदे हां, कोई गुरसिखा चात मार, वो अपने मापियां दा किन्ना सत्कार करदे ने। बड़ी वैरागमयी ओ घटना है, जिस दिन पिता मेहता कालू ने अपने पुत्र नानक नूं बहुत मारिया सी, सच्चा सौदा करके आए,

सत्संगियो सतगुरां क्या पिता परमात्मा दा रूप हुंदा है। पिता दा हर एक थप्पड़ मैनू पावन प्रसाद वांग है। तको गुरु नानक दे बोल देवतियां नू आख रहे तुसी क्यों दुख मनांदे हो। पिता परमात्मा समान हुंदा है। पिता दा हर एक थप्पड़ मैनू पावन प्रसाद लगता है। मेरा पिता मैनू एवें नहीं मारदा, जरूर मेरे कोलों कोई भुल होई होनी है। देवतियां कहा महाराज तुसी सर्व सृष्टि मान हो, तुसी कोई भुल नहीं कर सकते। सतगुरां आख्या हो सकता है उन्हां साधुआं नू भोजन छकाउंदिआं होइआं कोई चंगा बचन ना बोल सकिआ होवां, राजमा भोजन ना छका होया होवे। इसे लई मेरा परमात्मा रूप पिता मैनू डांट रिहा है। देवी देवते सुन के हैरान हो गए। कल युग दे विच कोई मां प्यो दा इन्ना सत्कार। धन गुरु नानक कहिंदे होए देवते टुर गए ने। बलिहार है गुरु नानक महाराज, मापिआं दा इन्ना सत्कार। गुरु नानक साहिब दे पिता बहुत नाराज होए, पर फिर भी गुरु नानक साहिब ने अपने पिता दे चरणा ते मस्तक चुका के खिमा मंग ली है। जैसे बारक पाए सुपाए, लख उपराध कमावे, कर उपदेश चिड़के बौ पांते, बहुड़ पिता गल लावे। गुरु नानक पातशाह ने सारी जिंदगी जिस तरह माता पिता दा सत्कार कीता है, वो मिसाल देण दे काबल है। बाबा नंद सिंह जी उपदेश करदे सन, जिसने अपना सिर मां बाप दे चरणां ते नहीं रखिया, मां बाप नू कदी मत्था नहीं टेकिया, गुरु ने किवें मत्था टेकीदा है उनू आ ही नहीं सकदा। बाबा जी बड़ी सोहनी बाणी दे विचों एक उदाहरण देंदे सन, होवे सरवण विरला कोई, होवे सरवण विरला कोई। आओ सत्संगियो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे दर्शन करिए। वो मापियां दा सत्कार किवें करदे ने, किन्नियां ही संगतां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे चरणां ते सीस झुकाउंदियां ने, पर गुरु गोविंद सिंह महाराज हर रोज अपने माता पिता दे चरणां ते सीस झुकांदे ने। एक दिन माता गुजरी ने आख्या, लाल जी तुसी मेरे चरणा ते नमस्कार ना करया करो, तुहाडे चेहरे चों मैनू निरंकार दी झलक पैंदी है। माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह नूं आख रहे ने, तुहाडे चेहरे चों मैनू निरंकार दी झलक पैंदी है। ऐ गल सुन के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने एक बारी फिर अपना सिर माता जी दे चरणा ते रख के फिर मत्था टेक दिता। कहन लगे, मां जे मेरे चेहरे तो तेनू निरंकार दी झलक पैंदी है, ये तेरिया ही असीसा ने, तेरा ही वल है, तेरिया ही लोरिया ने, तेरिया ही असीसा सब कुछ है। माता गुजरी ने हाथ जोड़ के उस निरंकार दा धन्नवाद कीता, ऐ निरंकार एहो जै लाल तू सबना नू देवी। गुरु गोविंद सिंह महाराज माता पिता दा किन्ना सत्कार कर देने, ये भी बेमिसाल कहानी है। एक दिन महाराज संगतां विच बैठे कुछ बेचारा कर रहे सन, बोलदे बोलदे चुप कर गए। कहन लगे,
प्यास लगी है। बई एक सिंह उठो पानी पिलाओ। ते संगत दे विच्चों एक नौजवान उठिया है। इंज लगदा है जिमें एक किसे उच्चे कराने दा है। सब तो पहला इसने हाथ साफ कीते, फिर कटोरा साफ कीता, बड़ी सुचम नाल पानी कटोरे विच पा के बड़ी अदब नाल सतगुरां अगे पेश कीता। महाराज जल छको। सतगुरां पुछ कीती, कदी अगे भी किसे नूं तू पानी पिलाया है? नहीं महाराज, साढ़े घर बहुत नौकर चाकर ने, फिर ते तू मां नूं भी कदे पानी नहीं पिलाया होना। नहीं महाराज, मैं ते कदे बापू नूं भी पानी नहीं पिलाया, नौकर चाकर बहुत ने। मां बाप नूं पानी पिलाना ते एक पासे, मैं ते कदी आप भी पानी चुक के नहीं पीता, नौकरां नूं ही आख छड्डीदा है। सतगुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की कह रहे ने, जे तू कदी मां बाप नूं पानी नहीं पिलाया, अज मैं प्यासा ते रह जावांगा, तेरे हथों पानी लैके मैं भी नहीं पीवांगा। प्यास लगी है, महाराज जी ने कटोरा हाथ विचों पकड़ के एक पासे रख दिता है। होए पलिया, मां बाप रब दा रूप होंदे ने, जे तू कदी मां बाप नूं पानी नहीं पिलाया, कोई गल नहीं, मैं प्यासा ते रह जावांगा, तेरे हथों पानी लैके मैं भी नहीं पीवांगा। इन्हें हाथ जोड़ के भुलां बख्शाइयां। सतगुरु, मैं मापियां दी सेवा करिया करांगा। पता नहीं सी, अनजाने विच भुल हो गई, अज तों बाद तुहाडे नाल बचन करदा हां, मैं अपने माता पिता दी सेवा करिया करांगा। सतगुरां ने असीस दित्ती, गुरसिखा सेवा करेगा ते गुरु नानक महाराज तेरी झोली खुशियां दे नाल भर देंगे। सत्संगियो, जे परमात्मा दे प्यार दी कहानी दो शब्दां विच आखनी होवे ना, ते मां बाप आख दिओ, उस निरंकार दे प्यार दी कहानी पूरी हो जांदी है। मां बाप आख दिओ। जे इक्को शब्द विच उस रब दे प्यार दी कहानी कहनी होवे, वे इक्को ही शब्द कहना है, ते मां आख दिओ, ते उस रब दे प्यार दी व्याख्या पूरी हो जाती है। अपड़ो बाणी, सतगुरां ने जगह जगह एक नहीं अनेकां शब्द उचारे ने, उस निरंकार दे प्यार दी कहानी माता पिता दियां उदाहरणां दे के दसी है। किन्ने ही शब्दां विच, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जां होर किन्ने शब्द पढ़ लो, हर जी माता, हर जी पिता। सत्संगियो, उस रब दा सवा मिलदा है माता पिता नाल, पर किड्डा भी निकम्मा होवे, मापे फिर गले नाल ला लेंदे ने। कहंदे ने ना, पुत्र कुपुत्र हो जांदे ने, मापे कदी कुमापे नहीं होंदे। हिंदुस्तान दी धरती उपर अनेकां ही भगत होए ने, पर एक भगत एहो जिहा होया है जिन्हें भगती नहीं कीती, लोग उहनू फिर भी भगत कहिंदे ने। तको सत्संगियो, भगती नहीं कीती, लोग उहनू फिर भी भगत कहिंदे ने,
ਵੀ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੋਵੇ ਸਰਬਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਹੈ ਰੱਬਾ ਸਰਬਣ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੀ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਵੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਲਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਧੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨਾਨਕ, ਆਓ ਮਨ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, साउथ ईस्ट कैलगरी, नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street North East कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। यह 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करते ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

0: कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

आसरं गोपाल कीर्तन है, निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर है, संत उद्धरण दयालं आसरं गोपाल कीर्तन है।

प्राप्ति वाले वो होए ने। इस तरह संत उदरण दयालन जेडे संत जन हैं ना उन्हां दे अंदर दया बहुत है। सो पहले अर्थ तां इहो ही हन कि संत उदरण दयालन के उह परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु दया दा सोमा है, दया दा घर है। सो इस तरह काल पुरख दा स्वरूप सतगुरु जी उन्हां वर्गी दया किसे विच नहीं है। श्रीमान भाई गुरदास जी दे बचन आपां पढ़दे हां, श्री गुरु दयाल की दया ना आन दे मैं जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लो ताई है। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कि गुरु वर्गी दया किस विच है जी, भावे चढ़दे तो लहिंदे तक जाके देख लईए गुरु नानक साहब वर्गी दया किसे होर विच नहीं है। किहड़ा अपने परिवार नूं छड के संसार दे भले वास्ते सारे जीवन की कालना घालदा है। सो भावे बड़े अज दे समय अंदर आपां देख रहे हां कि अपने आप दे विच गुरु बन बैठे ने, पर किसे दा भला करन वास्ते किसे दा धर्म बचाउन वास्ते अपना सिर कोई देंदा है। ये दया गुरु तेग बहादुर साहब जी दे अंदर ही है। जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लो ताई है, मनुखता दी फलवाड़ी नूं खड़ाउन खातर अपने पुत्र कोई नहीं जे वारदा, अपने परिवार नाल घरां दे नाल पुत्रां दे नाल बच्चियां दे नाल मोह ही इन्ना है, पर वह दया गुरु वर्गी होर किसी विच नहीं है। तो ऐसी ही दया का सबक गुरु नानक साहब जी ने अपने सिखां नूं पढ़ाया है। धौल धर्म दया का पूत, जिहड़ा धर्म है वह दया का पुत्र है। सो इसे करके तुलसी जीवी ने भी लिखिया है ना कि तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट मैं प्राण, क्योंकि सौ सियाणे इको मत, सियाणियां दा मत इक हुंदा है, मूर्खां दी कावां रौली हुंदी है कि फलाना धर्म माड़ा, फलाना पहरावा माड़ा, फलाने दा फिरका माड़ा। वह दूजियां नूं भंडदियां निंददियां ही अपना समा खराब कर लैंदे ने, पर सियाणियां दा इको एक मत है कि दया विच्चों धर्म पैदा हुंदा है, ते धर्म विच्चों संतोख, ते संतोख दे विच्चों सिमरन दी प्राप्ति हुंदी है। जां इंज कह लो कि दया विच्चों धर्म निकलदा है, ते दया दे नाल ही सेवा करन दी जाच आउंदी है, क्योंकि दया तो बिना, सेवा तो बिना जिहड़ी दया है उहनूं बांझ दया गुरु नानक साहिब ने दस्या है। जिस तरह पावन बचन गुरु नानक साहिब जी दे पढ़दे आ ना, सिर खुहाए पीहे मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही, फोल फदीहत मोहे लैण पड़ासा। सो ये पावन शब्द उन्हां दे प्रथाए लिखिया जिन्हां कोल बांझ दया है, क्योंकि सेवा करन दा चाह ही ना बनिया। इस करके सेवा मां है ते सिमरन पिता है। दया विच्चों सेवा जन्म लैंदी है, संतोख विच्चों सिमरन, ते जे संतोख ही नहीं ते सिमरन केवल एक पखंड दिखावा आपां कर रहे हां, क्योंकि जे मन विच संतोख ही ना बनिया, सिमरन दी तां पहली निशानी है कि उहदा अंतर संतोखी हो जांदा है। इसे तरह दयालु वह है जिहड़ी दया विच्चों सेवा ने जन्म लिया, नहीं तो दया तो बिना जिहड़ी कीती सेवा है ना वह भी एक सिर दा बोझ है, दिखावा है, पखंड है। कई आपां मनुख देखदे हां केवल दिखावे मात्र सेवा करदे ने कि असीं तां जी देश दी कौम दी सेवा करनी है, पर मन विच उह दया नहीं हुंदी। दया तो बिना एक सिर्फ दिखावा है, पर दया दे नाल जिहड़ा सेवा करदा उसे नूं आत्मक आनंद की प्राप्ति हुंदी है। मन विच दया है, तरस है। सो इसे तरह द्वापर कृष्ण मुरार, कृष्ण जी दे समय, सो उस वेले युधिष्ठर जदों उन्हां दी लगी सभा विच आवे ना ते उन्हूं क्या करन कि आओ राजन, मन विच बड़ी बार ख्याल आउणा कि आप तां इह भगवान ने ते मैनूं राजन करके बुलाउंदे ने, मेरे मन दी प्रसन्नता उदों होवेगी जदों मैनूं कहणगे आओ भगत जी। सो पर समा बीतदा गया। एक बार कहिंदे ने कि जंगल दे विच इन्ने, सो उस वेले भीलणी एक गर्भवती सी ते उस दा गर्भ छुट नहीं सी रहा, पर कल्ली सी जंगल विच। सो इस ने अपनी अखां बन के उस दे बच्चे दा जन्म दवाया, दाई वाला काम कीता, ते जदों कृष्ण जी दी सभा दे विच आए ते आउंदिया ही कहिंदे आओ भगत जी, भगत जी कह के सत्कारिया। सो मन बड़ा हैरान होया, कहिंदे कि अज तक तां तुसीं मैनूं राजन कह के संबोधन करदे सी, पर अज भगत जी कह के संबोधन कीता है, कारण
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ऐसा लगता है हिंदुत्व की सदी आ गई, सरयू की लहरों में भी जैसे मौज आ गई। आओ राम तंबू से महलों में चलें, महलों में ले जाने भगवाधारियों की फौज आ गई।

सिर्फ राजा राम का राज्याभिषेक नहीं, माता सीता, वो माता सीता जिनका विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास मिल गया, उसके बाद रावण हरण कर ले गया, लंका विजय के बाद भी राज्याभिषेक हुआ।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

गगन घिरे बदरा सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन छाया है अंधियारा। भीरू यह शाम कन्हाई ले जाओ इसको घर राधे ले जाओ इसको घर राधे ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144 3670 63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालेयां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary. Program da eh hissa tuhade tak Cassidy Hay Injury Law to Tara Cassidy ji de sahyog naal pahunchaya ja reha hai. Inna to kisi vi tarah de motor vehicle accident injury claim bare koi vi jankari lain layi tusi Tara Cassidy ji nu 403-777-1099 yani 403-777-1099 te sampark kar sakde ho. कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनीयम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नू 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जा विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

0: प्रोग्राम का ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 Avenue, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4367।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700 प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनी तिन्ना लोकेशंस तो हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171 80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

एक ओंकार श्री वाहि गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा।

त्रास निवारिय। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जजु करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बाप तरा काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल

जशनुपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचा

सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै, घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावै। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संतहो सबद धरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजी पंच सबद तित करे सभागै, करे सभागै सबद वाजी कला जित करे धारिया। पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ।

होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरे आयत देग तेग फत हे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

मान प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन त्रिपतानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन मेरे मन प्रीत चरण प्रभ परसन रसना हर हर भोजन त्रिपतानी अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ

नमन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूरन अविनाशी शरण गही पूरन अविनाशी आन उपाव थकत नहीं करसन कर गह लिए नानक जन अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन चरण सरन गुर तीर्थ पुरब कोट देवी देव सेव गुर चरण सरन है चरण सरन गुर कामना सकल फल रिद्ध सिद्ध।

0: ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210 4310 104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
4: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।